0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.

0: मेरा पिछले जन्म का कोई पुण्य था कि तुम जैसी आदर्श पत्नी मिली,
1: लेकिन तुम्हारे लिए कोई
0: अभिशाप था
1: कि तुम्हें मुझ जैसा पति मिला।

के प्रति और होने वाली संतान के प्रति अपना कर्तव्य भुलाकर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। मैं क्षमा चाहता हूँ तुमसे। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारी संतान तुम्हारे गुणों से भरी हो और मेरे दोषों से अछूती। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। वसंता दीदी ही मेरी माँ जैसी थी और अब तुम भी। तुम्हारे माता पिता मुझे श्राप देंगे। उनका श्राप सिर माते कर लेता हूँ। किसी का भी नहीं, प्रेम ही

कुछ दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपये का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि

चाहत एक तेरी अब तंग हो गई, जीना मेरे लिए जैसे एक जंग हो गया। यहां वहां जाने कहां कहां खोज गया, तेरे बिन जिया जाएगा ना सोचना। तेरी याद में रातें, तेरी याद में सवेरा, तेरे संग है उजाले, तेरे बिन है अंधेरा। रब से भी ज्यादा तू लगे है जरूरी, है जरूरी, है जरूरी, है जरूरी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Tu jaldi baara.

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00-571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7
11: जरा ब्रेक हुई खत्म और आप तमाम को एक बार फिर कहते हैं खुश आमदेद प्रोग्राम कवाली स्पेशल में। मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको पता है कि आपका और हमारा साथ रहता है, हर रोज़ होता है, और ये साथ हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम आपको मुख्तलिफ कलाम कवाली सुनाते हैं। तो अब चलते हैं जनाब अगले कलाम की तरफ।

फकीरों का देश है और वलियों के दर पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं होता। औलिया अल्लाह तो हर कौम की फरियाद सुनते हैं और ख्वाजा मुइनुद्दीन तो सुल्तान हिंद है।

कवालियाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बड़ा ही बड़े इनमें एक मैसेज होता है। तो आज भी अभी ने आपने ये कवाली सुनी और इसके बाद आपके लिए एक और कवाली पेश करते हैं, ये सुनिए। और हमेशा की तरह ये भी शायद इतनी ही लंबी होगी कवाली और ये हो सकता है कि हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले जाए, अगर ना भी हुआ तो हमारी मुलाकात अब ब्रेक के बाद ही होगी।

मैं पेश कर रहा हूँ, यही है शाने मोहम्मद। समाज फरमाइएगा, इसमें तीन प्लॉट आते हैं। पहला यही है शाने मोहम्मद, और दूसरा ये है एहसाने मोहम्मद, और तीसरा सबसे आखिर में ये है फरमाने मोहम्मद। समा

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: News, health, sport, educational programmes and much more only on Link FM.
1: जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
13: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
14: And the winner is
15: your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
0: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
6: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
7: This is Rahan.
8: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
11: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org, this is your community station, Link FM.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड ऑन 96.7 एफएम, ऑनलाइन ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट, दिस इज लिंक एफएम।

0: the latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station, Sheffield's Link FM.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM. दिल से आपके साथ.
3: लिंक FM Sheffield.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
18: और हर सूर दिल को छो जाए,
19: वही है Link FM.
17: दिल से आपके साथ
19: Link FM Sheffield.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, Link FM Sheffield.
1: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM Sheffield 96.7 Link FM.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Your number one for news in Sheffield.
2: Link FM.
3: You're listening to Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: This is Link FM.
18: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info at linkfm.com.

0: Link FM, your number one community radio station.
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: रीत, हुण तू आ गई है, हुण सब कुछ ठीक हो जाएगा।
3: Just I'm getting married.
2: तो फिर मेरा क्यों होगा?
3: वो तेरी प्रॉब्लम है।

क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन, सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन, कौन हमारा अपना है।

जी अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाब जंजुआ। अ वेरी वार्म वेलकम, दिस इज ड्राइव टाइम शो, लास्ट ड्राइव टाइम शो ऑफ दिस वीक, लाइव ऑन 96.7 एफएम्स फ्रीक्वेंसी अक्रॉस साउथ यॉर्कशायर, लाइव ऑन डीएबी एंड ऑनलाइन। Studio number is 0114261-8181 and WhatsApp 0793984939. 0793984939. And if you are busy and you cannot text me, then you can give me a missed call on WhatsApp number 0793984939. This way I will know your khairiyat. All I want to know is about you. If you are okay. अगर आप ओके हैं देन अल्लाह आपको ओके रखे, लेकिन कभी दिल के ऊपर हाथ रख के ये भी सोचना, दिल के ऊपर हाथ रखने के लिए दिल का होना बहुत जरूरी है। पत्थर के ऊपर हाथ रख के ना सोचना, यानी हो सकता है किसी के दिल में दिल की जगह सीना हो, उस सीने की जगह पे क्या हो, पत्थर लगाओ यार, दिल की जगह पत्थर लगाओ, यानी उसके सीने में पत्थर हो। तो अगर आपके दिल में पत्थर लगा है, तो शायद आपको ये चीज़ मेरी बात वाली महसूस नहीं होगी, और अगर दिल लगा है तो आपको समझ आएगी और आप एग्री करेंगे कि हाउ मैनी पीपल दीज डेज वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर खैरियत। इफ देर आर सो मैनी देन यू शुड कंसिडर योर सेल्फ लकी। लेकिन खैरियत का मतलब ये नहीं होता ना सिर्फ खैरियत पूछना, खैरियत का मतलब दिल से पूछना कि आप कैसे हैं, दिल से जानना या कोशिश करना जानने की कि आर यू ओके। यू नो समटाइम्स व्हेन पीपल आस्क यू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द पीपल एंड दे से आर यू ओके एंड द क्वेश्चन मार्क वो ठा करके दिल में लगती है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देयर इज समवन इन माय लाइफ Who's asking me?

This is Drive Time Show on Link FM 96.7 FM. Link FM, linking communities, thinking positive. WhatsApp 07939849339, 07939849339. Mohsin Bhai has text and he says, workshop, no signal. Mohsin Bhai, you're too far away. बहुत दूर है मोहसिन भाई और कई लोग होते बहुत करीब हैं लेकिन दिल के बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दिलों में हो के भी बहुत दूर होते हैं तो जो दूर रहना चाहे उन्हें उनसे दूर ही रहा करें यकीन करें और जो आपके साथ आपके करीब रहना चाहे उनके साथ ठीक है अच्छे तरीके से रहें पोइट्री थी कौन सी पोइट्री अच्छा जी कोई पोइट्री लगी थी हमें पता ही नहीं है पोइट्री भी लगी थी चलो जी कोई गल नहीं हाँ तो जी मोहसिन भाई ने बताया था कि जी कोई बहुत अच्छी जगह है लंदन रोड पे जहाँ पर लाहौरी चने अच्छे मिलते हैं यकीनन आपको पता होगा अगर आप में से किसी ने ट्राई किए तो प्लीज़ लेट मी नो वैसे मोहसिन भाई वल्ला जन्नत नसीब फरमाए मेरे वालिद साहब को वो एक मिसाल दिया करते थे कि फला ने लाहौर का रास्ता बताया लाहौर का टिकट नहीं बताया टिकट नहीं दिया तो आज वही बात है भाई आपका इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है यार सेलिब्रिटी तो नहीं लेकिन आप ये भी कह सकते थे लेट्स गो टू लंदन रोड एंड हैव अ ब्रेकफास्ट टुगेदर लेकिन तुसी रास्ता दस रही हो मैं आ गया और अगर हमारे लिसनर्स में कोई ऐसा है जो अच्छे चने बना सकता हो लाहौरी चने होने चाहिए भाई बाकी चने नहीं चलेंगे तो ज़रूर बताइएगा

0: is Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
13: And the winner is...
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
18: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
0: लिंक FM Sheffield.
19: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.

उम्मीद करते हैं कि यू आर स्टिल विद अस. व्हाट्सएप 07939849339. जैनब हैज आल्सो ज्वाइन कर रही है. सलाम भाई, विच लाहौरी चने यू आर टॉकिंग अबाउट, कहां के? वाह, कौन लोग हो तुसी भाई, कौन लोग हो? यानी मैं सोचता था कि कुछ लोग मेरी बात कभी सुनते नहीं है, समझते नहीं है. यहाँ तो सबका ये हाल है. आप कह रही हैं कि अदर ऑन अदर डे यू आर टॉकिंग अबाउट के सम फेमस बिरयानी इज कमिंग टू शेफील्ड. व्हेन डिड आई से दैट? आई नेवर सेड दैट. दो चीजों को आपने मिक्स कर दिया. मैंने कहा था कि एक बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे आने वाला है, जिसका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन माय से शुरू होता है. माय से, माय, ठीक है ना? आगे आप सारे अकलमंद हैं.

जी उम्मीद करते हैं कि अब तक आप हमारे साथ हैं और प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। योर मैसेजेस रियली मेक ड्राइव टाइम स्पेशल एवरी सिंगल इवनिंग। So keep sending your messages on 0793984-9339. I always enjoy hearing from our listeners. So make sure you WhatsApp 0793984-9339. और ये भी उम्मीद करते हैं कि जब भी आप ड्राइव टाइम सुनते हैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाती हैं और आपका सफर हमारे साथ अच्छा गुजरता है। दैट्स ऑल व्हाट वी वांट यार।

0: आवाज़।
1: जी लिखे जो खत तुझे, ये पुराने जमाने वाले हैं भाई, लग खत लिखने वाले हैं। अब तो ये है कि भेजो जो तुझे टेक्स्ट मैसेजेस या भेजे जो तुझे व्हाट्सएप, वो तेरी याद में। लेकिन आजकल तो वो क्या कहते हैं, क्लियर चैट, डिलीट चैट, नंबर ब्लॉक, टेंशन ही कोई। शायदा जी उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक आपने एंजॉय किया होगा।

और जी ये ट्रैक लगाया गया था अकील शाह के लिए, और अकील उम्मीद करते हैं आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। और फरजाना बहन ने बताया नहीं कि रौनक कितनी लगी है। अच्छा हाँ बताया नहीं है, किचन में, और मैं उसे चिकन पड़ रहा था, मैंने समझा चिकन बन रहा है आज किचन में, क्योंकि आमतौर पर हम जो जितने हमारे लिसनर हैं इन सब के किचन में चिकन ही बन रहा होता है या गोश्त बन रहा होता है। ज़रूर बताइएगा कि आपके चिकन में किचन बन रहा है या किचन में चिकन बन रहा है। नो प्रॉब्लम अकील भाई, गुड टू हैव यू इन ड्राइव टाइम शो। मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन ड्राइव टाइम शो रेगुलरली। And right after the drive time show, Raja Muhammad Saklan Saab and Master Razak Ajmal Saab will be here with Haqaiq. So stay tuned and keep listening to Link FM. And just a reminder, right after Haqaiq, you can listen to Geet Se Ghazal Tak. Agar aapko zauk hai, aapko ghazlein sunne ka, purane classic track sunne ka, तो वो प्रोग्राम जरूर सुनिएगा 8 till 10 गीत से गजल तक। एक और ट्रैक की तरफ चलते हैं, क्लासिक ट्रैक की तरफ चलते हैं। एक और क्लासिक ट्रैक की फरमाइश आई थी, देखते हैं कि आपको कैसे लगते हैं हमारे क्लासिक ट्रैक।

जी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ परेशान हूँ। ओए होए होए, हैरानी की बात बात परेशानी भी होती है भाई, खाली हैरान होने की जरूरत नहीं है। कई दफा लोगों के एक्शन ऐसे होते हैं कि आप सारी जिंदगी के लिए हैरान परेशान और फिर हैरान होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हुआ क्या है भाई।

लिंक FM के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से लिंक FM का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

0: कोर्ट के अंदर हम शहजादों वाली जिंदगी गुजारी, हम प्राइवेट जिंदगी पर कोई बात नहीं करेंगे, उसने कुछ सियासत के अंदर कोई मार नहीं खाई, उसको सियासी कोई तजर्बा नहीं था
1: पहुंचने में, 22 साल लगे
0: कहां पहुंचने में,
1: प्राइम मिनिस्टर
0: कहां पहुंचने में,
1: बहुत मार खाई।
0: साकिब निसार का शुक्रिया, कहां पहुंचते हो? अच्छा मास्टर साहब
2: देखिए जी, बात यह है कि एक तो ये बहस काफी ठीक है, लेकिन असल में होता यह है कि कभी कभार हम माजी में इतने झांकना शुरू कर देते हैं कि फिर हाल और मुस्तकबिल दोनों गायब हो जाते हैं कि भाई नेक्स्ट मतलब क्या होगा मुल्क का, लोग जो है ये भी चलो सुनना चाहते हैं कि आइंदा क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या हो रहा है। तुम्हारा जो है वो चलो ये तो बात होगी। एक चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि देखें आपने तमाम मसाले दी हैं और बिल्कुल ये तो हम एक प्रोग्राम के अंदर जो है ये बात हम कर भी चुके थे कि मरियम साहिबा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जो है बड़ा अच्छा काम का उनका एक इमेज बन रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमेज को ख़राब कर देती हैं।
0: बिल्कुल,
2: इन लोगों को मॉडल होना चाहिए और हमने कहा था कि जितने पैसे उन्होंने अपनी बच्ची की शादी पर या और किस तरीके से जो खर्च किए हैं वो गरीबों की बच्चियों पर खर्च करते, किसी और अदारे पर खर्च करते और एक रिकॉर्ड हो जाता। इसके बाद एक आम अगर नॉर्मल स्लाइड लेकर आते जो है जहाज इकॉनमी ने जो फर्स्ट क्लास में बैठ कर तो उधर और इमेज बढ़ता है, लोगों की इज्जत का ये सिस्टम है। बहरहाल चलो ये तो एक अलग तो इसी तरीके से बाकी भी जो लोग हैं, लेकिन ऐसा बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हुई हैं जो होती हैं, एक तो सियासतदान जो है ना जी, यकीन करें आप सब नाराज़ हो जाएंगे कि पीपल पार्टी के जो लोग हैं जो मारे उन लोगों ने खाई हैं, जितनी तकलीफ़ें उन लोगों ने बर्दाश्त की हैं इन कोई आदमी दुनिया का कर ही नहीं सकता। देखिए पूरी खानदान जो है वो शहीद हो गया, इधर हो गया, बाकी वर्कर देखो सारा कुछ हुआ। दूसरी बात जो है ये है, लेकिन जो नुकता है, नुकता ये है कि पूरी पीपल पार्टी, अब अल्लाह जनसीब को उसके भी ज़ियाउल हक के बारे में बेशुमार उन्होंने पॉइंट रखे, इसी तरीके से जो अदलिया का एक दो जज थे उनके बारे में रखे पॉइंट, लेकिन कभी देखा कि कभी जो है पीपल पार्टी ने पूरी फौज को गालियाँ दी हूँ, किसी सिपाही को पकड़ कर जो है गालियाँ दी हूँ, किसी जो है जज को पकड़ कर कहा हो कि ये सारी अदलिया ख़राब है, सब खराब है, बाहर जाकर इंटरव्यू दिए हूँ कि ये सारे का सारा मारे तो सारे का सारा ही सिस्टम ख़राब है, नहीं, उन्होंने कहा कि सब कुछ है, एस्टेब्लिशमेंट्स है, जो कुछ भी है सब कुछ है, लेकिन उसके बाद फौज हमारी है, अदारे हमारे हैं, हमने उनको ठीक करना है, हमने उनके साथ बैठकर सारा निज़ाम चलना है। अब देखें लेकिन उन्होंने कभी भी, अब जो सिंध का कितनी मुखालफत आपस में सो बातें हुई हैं, कभी ये नहीं हुआ कि सिंध का सूबा हमारी मर्जी से चलेगा, जो बाकी दुनिया के जो दूसरे सूबे हैं मुल्क अपनी मर्जी से चलेंगे, इस तरीके से नहीं। मैं समझता हूँ आज का जो मौजूदा वक्त है ये बहस ये होनी चाहिए कि जिस तरीके से जो ये मुज़ाकरात हैं या जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अब जो है जो जहाँ से हम चल रहे हैं क्या इसी रूटीन पर चलते रहेंगे, कुछ का फ़ायदा होगा, क्या इस चीज़ से हमने रुकना पड़ेगा, क्या दो दो कदम हमको तमाम को पीछे नहीं हटना पड़ेगा, क्या सियासतदानों को ये मीटिंग जो है जारी नहीं रखनी पड़ेगी, क्या आपस में तमाम सियासतदानों के साथ और दानिशवार और लोग जो समझदार हैं उनको भी साथ बैठकर बिठाकर एक अच्छे तरीके से कोई मुल्क के लिए डायरेक्शन नहीं हमने बनानी। ये चीज़ें जो है असल में आज जो है समझने की सोचने की हैं, बातें जो हो गई हैं किसी ने किया नहीं किया ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। बहरहाल दुआगो हैं कि अल्लाह पाक जो है मुल्क पाकिस्तान की जो है वो बेहतरी फरमाए और इसको आगे जो है वो चलने के अल्लाह पाक बेहतर तरीके से क़यादत में नसीब फरमाए और अच्छे तरीके से।
0: ज़बरदस्त, पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल जी सही बात है जी, पीपल्स पार्टी ने, अल्ताफ़ साहब भी एग्री करेंगे कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी मसाइल हैं, सिंध के अंदर बेशुमार मसाइल हैं। देखिए कि पीपल्स पार्टी को तो ये चाहिए था कि कम अज़ कम सिंध के अंदर, सिंध ऐसा होता जैसे पंजाब है, तो पंजाब को किसी ने तो ठीक किया है ना, चाहिए वो कर्ज़े लेकर ठीक किया है, जैसे भी किया है, किसी ने तो पंजाब के अंदर बेहतरी लाई है ना जी, चाहिए लूट मार करके बेहतरी लाई है, किसी ने तो बेहतरी लाई है ना पंजाब के अंदर। लेकिन पेशावर का हालात देखें, जहाँ 13-14 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वहाँ के हालात देखिए तो यकीन नहीं है, उन पर बात करने को जी नहीं चाहता। लेकिन अब जो मास्टर साहब ने बड़ा एक अहम बात कही है कि पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम इदारों को बदनाम नहीं किया, मसाइल थे उनके, झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने भी इदारों के बारे में गुफ्तगू की है, नवाज शरीफ ने भी की है, जर्नैलों के नाम लिए हैं, चंद जर्नैलों के नाम लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सारी हदें तजावज़ कर दी, क्या पाकिस्तान के अंदर और क्या पाकिस्तान के बाहर कोई अदारा नहीं छोड़ा, और कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने इदारों को या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कही ना हो, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में या जजेस के बारे में जो कहा गया है, ये क्या ये तरीका बेहतर था? अल्ताफ साहब फिर ब्रेक का टाइम पहुंच चुका है, ब्रेक पर ब्रेक

0: पर चलेंगे, लेकिन फिर ब्रेक से वापस पहुंचेंगे, पहले की तरह आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। शुरू करें बाद, अभी 10 सेकंड हैं ब्रेक
1: जी। बिल्कुल, ये खराय तहसीन है बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कि इनकी कुर्बानियां बेशक राय गानी जाएंगी, और कुर्बानियां भुट्टो साहब और बेनजीर साहब और भी इनकी पार्टी ने बहुत सारी कुर्बानियां
0: दी। ब्रेक का टाइम हो चुका है। जी जी,
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज, फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है, तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
18: My name is Shireen.
19: My name is
2: Link FM ke tamam programon mein ki jane wali guftugu, program ko pesh karne wale mezban aur program mein shamil mehmanon ki apni zaati raaye hoti hai. Unki guftugu se Link FM ka muttafiq hona zaruri nahi.

0: 2 hours of music, 2 hours of memories, 2 hours of Geet and Ghazal. Enjoy the music on Link FM 96.7 FM.
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: in children's lives. Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Nazir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
6: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
7: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585.
0: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
8: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
9: 96.7 Link FM.
10: You are listening to Link FM.
8: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: 2 hours dedicated to beautiful melodies, unforgettable geet, and soulful ghazals. Only on Link FM 96.7 FM.
1: हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते,
2: मगर जी नहीं सकते।

0: Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम्ब पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 011-429-6092। पार्ल Bakers.
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: Listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.

0: दो घंटे खूबसूरत धुनों की, यादगार गीतों के और दिल को छू लेने वाली गजलों के, सिर्फ लिंक एफएम 96.7 एफएम पर।
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.